0: को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफरमा तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट जो 2700 में खरीद गर्दा सोही इंटरनेट पैकेज नया जडान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल मा आफ्नो लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वायनेट अब सबै कनेक्टेड।
1: हामी जन्मदात्री शिकारी हौ, शिकारी पुरै दैलेख मलाई चाहियो।
2: VFX सिनेमाज कुराही दस नारायण पुरसौडी कुला दाङमा एक्शन नायक विराज भट्टद्वारा अभिनीत भव्य प्रदर्शन भइरहेको छ नेपाली कथानक चलचित्र।

6.9 को शानदार डिस्प्ले, AI powered camera, 2 वर्ष को वारंटी सहित Redmi A7 मा 5200 mAh तथा Redmi A7 Pro मा 6000 mAh पावरफुल बैटरी को साथ थप अत्याधुनिक विशेषताहरूले तपाईको मन जित्छ बारम्बार।

0: 6.9 inch AI powered camera. 2 years ko warranty sahit. Redmi A7 ma 5200 mAh tatha. Redmi A7 Pro ma 6000 mAh powerful battery ko saath thap atyadhunik visheshta harule tapai ko man jitcha barambar.
1: Bajaj RE Free Service Camp.
2: फ्री सर्विस कैंप में दीने छूट तथा सेवा
1: सर्विस चार्ज में 50% छूट
2: इंजिन आयल में 18% छूट
1: टायर किंदा 10% छूट
2: पाँच पूर्जा में 10% छूट
1: आगामी चार वटा सर्विस निःशुल्क दीने साथ ही निःशुल्क एफआई टेस्ट पनि
2: फ्री सर्विस कैंप यही जेठ 10 गते देखि जेठ 15 गते सम्म रहने छ
1: सुनेर हैन हेरेर पत्याउ बजाज स्पेयर पार्ट्स को पिंक स्टिकर हेरेर जिनेउन हो कि हैन छुट्याउ
3: थप जानकारी को लागि नजिकैको बजाज अटो विक्रेताकोमा सम्पर्क गर्नुहोस्
4: सम्पर्क ओम बाबा अटो प्राली बीपी चौक घोराही दाङ
5: सम्पर्क फोन नम्बर 0825 63 919 सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98647 22656 97055 51 135 र 98128 45955

बाय नेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया जडान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सबै कनेक्टेड।

0: आवाज पश्चिम नेपाल को आवाज आवाज हिंद को आवाज यो हो रेडियो मध्य पश्चिम एफएम 91.4 MHz।
1: स्वास्थ्य क्षेत्र में विश्वासिलो ठाउँ कोई कसैलाई रोग लागे गोर्खा अस्पताल जाऊ। सर्जन फिजिशियन हार जोड़ने नशा प्रसूति रेडियोलॉजी एनेस्थेसिया बाल रोग थायराइड प्रेशर सुगर छाती मुंडू नाक कान घाटी टाउको गैस्ट्रिक अल्सर फिजियोथेरापी दूरबीन बिरिबार ऑपरेशन लगायत स्वास्थ्य संबंधी संपूर्ण काम हुन्छ।